0: has only one Shiv Sena.
1: Shiv Sena ke adhyaksh aur Maharashtra ke upamukhyamantri Shri Eknath Shinde ji pehle Shinde ji ke piche Shiv Sena Shinde gut kehna padta tha. अब कोई घूट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है.
2: साहिबाना शाल पुष्पहार.
0: Meanwhile, the battle has also descended into a war of metaphors. Tigers, wolves and dogs have become the latest weapons in the bitter feud between the rival Sena factions. Eknath Shinde fired the first salvo, saying dogs keep barking while the tigers roar.
3: कुछ कुत्ते रोज भौंक रहे हैं. पण मी तुम्हाला सांगतो, कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला आता है. कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है.
0: The Udhav camp hit back swiftly, saying not every dog is loyal.
4: ऐसे बेईमान लोग हैं.
5: जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं. कोई भी हो, उनका सीरियसली सीरियस, जब तक सत्ता उनके हाथ में है और पैसा हाथ में है, तब तक इस प्रकार की बातें वो करते रहेंगे. जिस दिन ये सब निकल जाएगा हाथ से, तो जनता उनको उनके बदन पर कपड़े नहीं रखेंगे. आप देखो.
0: As the political slugfest intensifies and the cracks within Udhav Sena widen, one question looms large. Can Operation Tiger bring an end to Uddhav Thackeray's political run in Maharashtra? Bureau Report, India Today.
6: This is a tragedy at a temple in Maharashtra. At least 6 devotees have died and several others have been injured when the roof of an under-construction Hanuman temple collapsed during a religious program at Yashwari in Parbhani district. The administration launched rescue operations on a war footing, with efforts being underway to reach those believed to be buried beneath the very rubble. A large number of devotees had gathered at the temple. Meanwhile, the Prime Minister has condoled the loss of lives in Parbhani. Chief Minister Devendra Fadnavis, too, has expressed grief over this tragic incident.
7: ये मंदिर का पूरा काम चालू था, इनकंस्ट्रक्शन वर्क था ये. हाँ, तो इस वजह से, लेकिन पूरी हमारी टीम थी, यहाँ के पूरे गांव वाले थे. हमारे पास का गांव है, हमारा गांव है जो, और यहाँ के पूरे जो सरपंच थे, पुलिस पटेल वगैरह, ये सब लोग थे, और ये मंदिर कमेटी के जो बहुत सारे लोग थे, इन सभी ने हम सबकी मदद से और पूरे भावी श्रद्धालुओं की मदद से सभी पत्थर को लिफ्ट कर आके, यहाँ के जो भी अंदर आदमी, औरतें, बच्चे वगैरह सब कुछ फंसे हुए थे, उनको लिफ्ट करा के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है. इसमें इस घटना में 10 से 15 लोग घायल हुए और शायद डेथ का आंकड़ा 5 से 6 है.
8: यही है यशवाड़ी का मंदिर, जो कि आज फिर 3:16 पर दुर्घटना घटी है, जो कि अलग अलग जख्मी को अलग अलग अस्पताल में शरीक किया गया है, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है. आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुरी पैमाने पे अपना काम कर रही है. देहाती इलाकों के लोग भी मदद कार्य के लिए जुटे हैं.
6: In his first address after BJP's poll victory in Bengal, Prime Minister Narendra Modi took sharp jibes at the TMC and other opposition parties while crediting the Suvendu Adhikari-led government with revitalizing the state. While speaking at the Pashchim Bango Divas celebrations held at Hooghly's Tarakeshwar, he said that the state has been freed of its shackles and that Poriborton has lifted people's spirits. Prime Minister Modi also claimed that the double-engine government is working in super-fast pace to address the damage and shortcomings created by the left and then the TMC over decades in Bengal. Recalling Bengal's past, Prime Minister Modi claimed that attempts were allegedly made to separate Bengal from India and that those designs were ultimately defeated. He also blamed the previous governments led by the Congress, the Left Front and the TMC for neglecting West Bengal's interests, alleging that foreign ideologies were imposed time and again over the state.
9: Bengal ki hawa mein ab ek nayi taajgi hai. Yahan ke kan kan se ek nayi khushbu aa rahi hai. ऐसा लग

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: देखिए, जब बात अंडमान और निकोबार की हो रही है, इसको लेकर एक विवाद भी है, और विवाद ऐसा नॉर्मल सा नहीं। नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। वो कह रहे हैं कि जो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, किरण रिजिजू जी, ये ग्रीड ओवर ग्रीन है कि करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे, इतना बढ़िया यहाँ का प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट है, वो बर्बाद हो जाएगा केवल पैसा बनाने के लिए।
2: सबसे पहले तो आपको समझना होगा, हमारा देश में कोई मन मर्जी किसी चीज़ को तबाह नहीं कर सकता है। हमारा एनवायरनमेंट लॉ बहुत स्ट्रांग है, और हमारा सरकार का नीति, प्राइम मिनिस्टर का क्लाइमेट के प्रति, एनवायरनमेंट, वातावरण, और पूरे जो हमारा इकोसिस्टम, जितना भी चाहे वो मैरिन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में हम बहुत सेफ हैं। दूसरा, जब हम इतना बड़ा सागर हमारे पास है, हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश का इकोनॉमी में, जब हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, हमारा ओशन का, हमारा इतना वास्ट दो सागर और एक हिंद महासागर हमारे पास है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का जीडीपी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उससे देश के लिए हमने क्या काम किया और देश के लिए क्या लाभ उठाया है। सवाल ये है, इन्वायरमेंट तो एक बहाना है। यहाँ जो नेटिव जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो निकोबार में शम्पेन ट्राइब हो, चाहे वो निकोबारिस हो, ग्रेट अंडमानिस हो, जारावास हो, यहाँ नॉर्थ सेंटिनेलिस हो, किसी को आज तक भारत सरकार का, जब से आज़ादी से लेकर आज तक, कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया है, यहाँ अधिकारी सब बैठे हैं, उनको मालूम है, यहाँ इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, यहाँ जो टेरिटरी है अंडमान, यहाँ जो नेसेसरी सेटलमेंट जिसको करना था, हमारा चाहे वेस्ट बंगाल से आए हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अलग अलग जगह से काफ़ी लोग हैं, वो भी पूरा नियम के तहत ही रहता है। वो जाके जंगल नहीं काटते हैं, यहाँ जाके बम नहीं मारते हैं सागर में जा करके, यहाँ जा करके इलीगल काम करके स्मगलिंग नहीं करते हैं। वो अपना मेहनत करता है, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हैं, यहाँ का नेटिव लोगों का रक्षा करता है। इसलिए ये जो प्रोपोगंडा राहुल गांधी जी ने जो फैलाया है, वो भारत का भविष्य में जो स्ट्रेटेजिकली जो एक लिवरेज, एक ताकत मिलने वाला है, उसको कैसा रोका जाए, किसी भी तरीके से उसको रोकना है। देश का नीति, हमारा नेतृत्व का सोच और हमारा जनता, अब सब मालूम हो गया। अब आप सरकार में नहीं आ सकता है तो देश का जो ग्रोथ है, हमारा देश का संपत्ति को, हमारा भविष्य को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं?
1: सर, ये तो आप भारत के नेता विपक्ष पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
2: आरोप नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं।
1: कि भारत के नेता विपक्ष भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं।
2: नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम, मैं राहुल गांधी जी अकेला नहीं बोल रहा हूं, वो तो एक मोहरा है। इतना बड़ा एक इकोसिस्टम ताकत इस देश में आज काम कर रहा है। कहीं भी डैम बनेगा, पूरा पहुंच जाएगा एनवायरमेंट के नाम में, कहीं एक खनन होगा, कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, उसको रोकने के लिए एनवायरनमेंट के नाम में वहाँ पहुँच जाते हैं। एक हाईवे प्रोजेक्ट करेगा, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा उनका प्लाटून पहुँच जाता है, PIL फाइल करेगा, प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। ये जो जमाव वाला एक ग्रुप है, इन लोगों ने तो देश को पूरा तबाह करके रखा हुआ है, और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद से इतना लंबे समय तक तो उनका जो सरकार चला था, तो देश को तरक्की के रास्ते में तो लेके नहीं आया। आप जब मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जो तरक्की हम लोग कर रहे हैं, और भरोसा जनता से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर जनता आपको वोट नहीं देते हैं या आप सत्ता में नहीं आया, तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, तो उसको देश को क्यों गाली करना है? देश का तरक्की को रोकने का कोई जरूरत नहीं है।
1: तो किस तरह से अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट का जो जीएनआई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उससे देश की तरक्की होगी, अंडमान निकोबार की तरक्की होगी जो उसके न बनने से रुकेगी। और आप उत्तर पूर्व से आते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो जो खतरा एक पड़ोसी से भारत को है वो आप भली भांति समझते हैं। किस तरह से विकास की उन योजनाओं को रोका जा रहा है आपके मुताबिक?
2: किसी देश को टारगेट करके हम चर्चा नहीं करना चाहते। स्ट्रेटेजिकली जो हमारा एडवांटेज क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं भारत सरकार, विशेष करके जो मेगा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट आते हैं, उसको अगर आप अपोज करना है तो आप बारीकी से समझाइए लोगों को। आप बिना तर्क और बिना एक्सप्लेन किए असली वजह ऐसे ही आप हवा में बोलेंगे कि एनवायरनमेंट बर्बाद करेंगे, ये प्रोजेक्ट से सबको नुकसान होगा, ऐसे हवा में बोल करके आप प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते हैं।
1: नहीं, जैसे 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर जो, अच्छा आज आपने डाइविंग की तो जो अंडरसी कोरल है वहां पर वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टर्टल की जो वहां पर नेस्टिंग होती है लेदरबैक टर्टल्स की नेस्टिंग वो प्रभावित होगी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
2: ये जो आरोप लगाया इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं कि बिना तर्क का आरोप नहीं लगाना चाहिए, खास करके जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, ठीक है, बहस होते हैं वो ठीक है, मगर राष्ट्रीय हित में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये मैरिन लाइफ या जो मैरिन इकोसिस्टम का जो बात करते हैं, ये तो अभी एलजी साहब ने बताया, मैंने आज जाके देखा कितना सुंदर दुनिया है अंदर में, उसको बचाने के लिए हमारा सरकार ही काम कर सकता है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन तरक्की करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ डाइविंग करके तो अपना जिंदगी तो हम पूरा नहीं कर सकते, कई और काम भी करना है, तो डाइविंग भी करना है हमको, वन संरक्षण भी करना है नहीं मैं तो सही बात बता रहा हूं, हर चीज करना पड़ेगा ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है, यहाँ का इंडिजिनियस जो नेटिव है उनका संरक्षण भी करना है, और यह इंडस्ट्री भी आना चाहिए, और यहाँ जो विश्व का सबसे खूबसूरत जो एक पर्यटन का जो सेंटर, टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए वो भी बनना चाहिए, वंचित तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ उल्टा हम लोगों ने लेट कर दिया है, पहले होना चाहिए था। और जो डीप ओशन में जो हम लोग एक्सप्लोरेशन, आपको मालूम है डीप ओशन मिशन मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, समुद्रयान हमारा तैयारी है, मैं उस समय जब अर्थ साइंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे थे तब भी मैंने जा कर के पूरा सेंटर देखा है, हमारे इंडियन ओशन में मैपिंग भी हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग डीप सी डीप ओशन में जा कर के मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, और 5000 मीटर से अंदर जा कर के हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये सारा बहुत तेजी से चल रहा है, पहले कभी भी डीप ओशन मिशन वगैरह कुछ नहीं था।
1: तो ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो भारत के विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं ये ताकतें, और भारत के अंदर ही लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं?
2: यहाँ हमारा देश में एक जो वामपंथी विचारधारा के ग्रुप तो पहले से ही है, कोई भी अच्छा काम इस देश में होना नहीं चाहिए। जब चीन और भारत का लड़ाई हो रहा था 1962 में, उस समय तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी में खेमे जो है चीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको मालूम है, फिर वो सीपीआई और सीपीएम में विभाजित हुआ। आज भी बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का तरक्की नहीं दे सकते हैं, वो हम आर्टिकल 370 हटाया उसको भी विरोध किया, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो विरोध करते हैं, तो इनको हम सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाकी अच्छा सोचने वाला, देश के लिए सोचने वाले जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सबका एक साथ आना होगा, ये तो समय आ गया, और अब इस तरह के लोगों को मार्जिनलाइज करना जरूरी है, और विशेष करके जो भारत के तरक्की को रोकने के लिए जो तथ्य हैं उनको डट के मुकाबला करना होगा।
1: अच्छा एक प्रश्न और, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट में सबको साथ लेकर चलना ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी भी है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के या नेशनल इंपॉर्टेंस के इतने बड़े मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष को आप कन्विंस करेंगे या उनको लेकर चलेंगे कि ये परियोजना क्यों आपकी दृष्टि में अच्छी है?
2: देखिए, नेता प्रतिपक्ष को मैं समझा नहीं सकता हूँ। उनका माइंड, उनका एक सोच और उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, एक एनजीओ ग्रुप्स है जो उनको आइडिया देते रहते हैं, ये करो वो करो। वैसे तो कलीग है तो हम तो बात करते ही हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व भी है, सारा ओपोजिशन लीडर के साथ भी मैं बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं, सीनियर लीडर का घर में मैं जाता भी हूँ। मेरे ये दुश्मन नहीं हमारे, लेकिन जब देश के विरोध काम करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वरना तो हमको, आप सरकार को आप क्रिटिसाइज करो, गाली दो, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में चलता है, लेकिन राष्ट्रहित में, राष्ट्र के महत्व प्रोजेक्ट को अगर विरोध करता है तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहस जो भी हम लोग एक दूसरे को करते हैं या विरोध करते हैं वो ठीक है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको एकजुट होना जरूरी है।
1: आपने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने आपको धन्यवाद भी कहा और कहा जुजुत्सु हो जाए, तो क्या दो दो हाथ हो जाए इस मुद्दे पर उनके साथ आपको?
2: नहीं,
1: क्या
2: ये तो मजाक है। उन्होंने पिछली बार मुझे कहा था कि उनके घर में जिम है तो एक साथ जिम करेंगे। मैंने कहा कि, मैंने मजाक में कहा कि आपका साथ मैं जिम नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है। तो फिजिकल इशू नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मजाक में कहा। लेकिन चलो, हमारा नेता प्रतिपक्ष से मैंने बर्थडे ग्रीटिंग किया, उन्होंने मजाक किया, लेकिन जो सीरियस बात में मैं मानता हूँ कि अगर आज भी नेता प्रतिपक्ष सुधर के राष्ट्र निर्माण में अगर जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं तो अपील ही करूँगा आपके माध्यम से, मैं कह सकता हूँ कि आपको जितना जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स देश के बाहर जितने भी हैं, उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया, देश में भी कई लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं, उनको आगे करते हैं, आप ऐसा करो, सरकार का प्रोजेक्ट का खिलाफ काम करो। मैं समझता हूँ अभी मैच्योर हो गए हैं राहुल गांधी जी, इन सब से दूर रहने से ठीक है, और खुद भी सकारात्मक भूमिका निभाने से देश के लिए अच्छा होगा।
1: आप इस मंच पर मेरे साथ जुड़े किरण रिजिजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे टेलीविजन। इंडिया टुडे टेलीविजन स्टूडियो इज सेफ फ्रॉम डेंगू, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: Right field, and it will...
5: From the first pitch of the season to the stretch run.
6: And that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
7: A very good morning to all our viewers. You're watching India Today. I'm Anjali Pandey. Lots lined up for you in this bulletin. But first, let's take a look at the headlines of this hour. Prime Minister Narendra Modi led the country's International Yoga Day celebrations from Kolkata. Prime Minister stressed on the role yoga plays in living a healthy and balanced lifestyle.
8: Our target must be to be more resistant to lifestyle diseases at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.
7: The NEET re-examination for over 22 lakh students to be held today under heightened security arrangements. Authorities have deployed strict surveillance measures at centres nationwide to ensure a fair and smooth examination process. In a major boost to India's indigenous defence capabilities, Prime Minister Modi is all set to commission 3 home-built naval warships. The induction is expected to strengthen the Navy's combat readiness and maritime power. Deadly mishap in a temple in Maharashtra's Parbhani. At least 6 devotees dead and several others trapped under debris after a portion of roof collapses. Prime Minister Modi expresses grief. Ceasefire under strain in West Asia. Iran announces closure of the Strait of Hormuz, blaming Israeli strikes in Lebanon and alleged U.S. violations of the MOU. The U.S. rejects the claim, saying the waterway remains open. Even as tensions persist, J.D. Vance is heading to Switzerland for talks with Iran, whose delegation has already arrived.

0: The visuals from Kolkata, where Prime Minister Modi is commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, which include INS
1: officers, Dunagiri, Sanshodak, Evam Agra, Sammanit veterans, GRAC ki karmchari, Evam karmik gun, Deviyon aur Sajano.
0: INS Sanshodak and INS Agra are being commissioned in Kolkata. These warships significantly boost the Navy's combat and anti-submarine and also hydrographic survey capabilities, while also pushing India's domestic defense and manufacturing to over 75% indigenous content. It's a big boost to India's maritime combat capabilities. It also strengthens anti-submarine warfare preparedness. And it also enhances naval hydrographic survey capabilities. And right now, Admiral Krishna Swaminathan is speaking. He's the Navy chief. All right, my colleague Indrajit Kundu is now joining us with more details on this. Indrajit, big boost to Atmanirbhar Bharat. Tell us more about these three warships that are being commissioned in the presence of Prime Minister Modi in Kolkata.
2: It's a big day for the Indian Navy. Three indigenously built, state-of-the-art warships being commissioned in the presence of the Prime Minister in Kolkata, built by the Garden Bridge Shipbuilders in Kolkata itself. So it's a big boost for the Indian Navy. INS Dunagiri, of course, is a stealth frigate. INS Sanshodak is a survey vessel. The last survey vessel, in fact.
0: Let's hear the Navy chief while commissioning the three warships.
1: GRAC, ek lambe samay se भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है आज इस ट्राई कमिश्निंग के उपलब्धि के अवसर पर मैं जीआरएसी की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और एमएसएमईज को भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है नेवल हेडक्वार्टर्स कमांड हेडक्वार्टर्स वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं जो इन तीनों जहाजों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमिश्निंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में यह दूसरी ट्राई कमिश्निंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं INS Dunagiri प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की पांचवी वॉरशिप है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज से लैस हैं इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है INS Sanshodak संधाय क्लास के चौथी हाइड्रोग्राफिक वेसल है आज विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर इसका कमीशन होना इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है यह जहाज अपने हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से भारत के पार्टनर नेशंस की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी को सहयोग प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के महासागर विजन को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी INS Agra अर्नाला क्लास की चौथी ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है इसके तहत कुछ जहाज प्राइवेट शिपयार्ड में बन रहे हैं जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ जहाजों के निर्माण का समय भी कम हो रहा है अंत में मैं Dunagiri Sanshodak और Agra के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रूज को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आज ये पोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं यह पोत भारतीय नौसेना की क्षमता को और नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएंगे। मुझे पूरे विश्वास है कि इन जहाज़ों के अधिकारी और नौसैनिक अपने जहाज़ों का आत्मविश्वास और पूरे जज्बा के साथ संचालन करेंगे, पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में नए और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना के हर एक अधिकारी और नौसैनिक की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है सर कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए हैं। शन्नो वरुणः, जय हिंद।
3: Now, the commanding officers designate of the three ships will read out the commissioning warrant.
4: Captain Divya Alok, Vishisht Seva Medal, Namit Kaman Adhikari Dunagiri.
5: Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Dunagiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Dunagiri will be administered by the flag officer commanding in chief Eastern Naval Command, given under my hand this the 21st day of June 2026, signed Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff.
0: So the commissioning event is being held at the Naval Dockyard in Kolkata and is being presided by Prime Minister Modi. The three warships, INS Dunagiri, the stealth frigate, INS Sanshodak, the survey vessel, and INS Agre, anti-submarine warfare shallow watercraft, are being commissioned currently in Kolkata.
6: Sir.
7: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
8: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: Cybersecurity jobs are exploding, and a degree from WGU helps you lead the charge.
11: It's helping my career because my boss is leaning on me for designing the security space.
10: Learn more at wgu.edu.
12: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: And Prime Minister Modi is at the Naval Dockyard in Kolkata, where the commissioning of three warships is currently taking place.
1: जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है, और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है, आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है, और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज INS संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा, और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने INS विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है, यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है, यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरिटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरिटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक MSMEs ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 MSMEs में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग ship repair, ship recycling तथा MRO को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है. साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है, वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है. साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है. सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है. इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं. साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है. इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं. 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया. इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई. इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है. 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था. आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है. 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़. आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है. भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं. साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है. मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है. साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है. यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है. हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं. विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथियों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है, समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं नेवी के सभी साथियों को, देशवासी के सभी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना को, सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।
2: आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए
0: Prime Minister Narendra Modi commissioned the three warships INS Dunagiri, INS Anshodhak and INS Agrey, also highlighting how significant this is for national security, and not just national security but also for economic security. He also highlighted how today is World Hydrography Day, and on this occasion, on this day, India is commissioning its most advanced hydrographic warship, INS Anshodhak. So it has been built in India, designed in India, and also Indian engineers and companies have been involved in the making of these three warships. It's a big boost to Atmanirbhar Bharat, big Atmanirbhar Bharat message by Prime Minister Modi. And this not just strengthens security, but it has also created employment in the country. And that was also highlighted by the Prime Minister. Over 200 MSMEs have contributed in the making of these three warships. Let's also talk about the features, the characteristics of these warships. So INS Dunagiri, it's a modern warship which has been built in India. So now three indigenous warships have joined the fleet. Now, what are the implications of these, though? So it gives sharper edge against enemy warships and submarines, and stronger protection for India's long coastline as well. That's exactly what has been mentioned by the Prime Minister also. It helps in better surveillance across the Indian Ocean, so that also makes it extremely crucial. Safer navigation through more accurate sea mapping. So that is also in which this warship is going to help. And it also gives greater readiness for future naval operations. It's a major boost to Make in India defense manufacturing. All these three warships have been made in India. It also enhances India's maritime power and regional influence. So that is, those are the implications of the commissioning of these three warships, and which include INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and also INS Agra. Remember, this event is being held in Kolkata at the Naval Dockyard. These are the implications. It's extremely crucial for the Indian Navy. As Prime Minister Modi mentioned, that this is not just significant for the security, for the national security, but also for economic security, especially given the geopolitical situation that we've been witnessing over the past few months. That makes it even more significant. And that's exactly what the Prime Minister was also highlighting. It gives a sharper edge against enemy warships and submarines. We've been seeing what has been happening in the Strait of Hormuz. There was U.S. blockade. There were attacks that were happening on the vessels passing through the Strait of Hormuz. So in a time like that, now India has Made in India warships being commissioned. And this is a big boost to Atmanirbhar Bharat as well. It gives stronger protection also against enemies. Let's understand about these three warships in detail. So first is INS Dunagiri. It's the fifth stealth frigate under Project 17A. It has been equipped with advanced sensors. It is armed with BrahMos and surface-to-air missile system. It will boost Navy's combat capabilities, and it is indigenously built by Garden Reach shipbuilders and engineers. So that is about INS Dunagiri. There's also INS Sanshodhak, which is a survey ship that maps the seafloor, and it helps the Navy navigate safely in Indian waters. It also supports search, rescue and scientific missions. And there's INS Agra, the third one, which is built to find and track enemy submarines. It carries sonar and torpedoes and other underwater sensors. It helps protect India's coastline and naval fleet from underwater threats. So INS Dunagiri is a stealth frigate. INS Sanshodhak is a survey vessel, whereas INS Agra is anti-submarine warfare shallow water craft. And now, shifting focus, some breaking news coming in. This is regarding the NEET re-examination. Now, the NEET question papers are under maximum security. In fact, India Today gets the exclusive access. We'll show you how the question papers of the NEET re-examination are being moved out of the strong room. CRPF escorts the question papers, and local police have also been kept away. So top central bank officials are accompanying the papers, the question papers, and SUVs with papers escorted by armed CRPF men. Multi-layer security to prevent another paper leak. So just hours to go. The paper will be starting at 2 p.m. The students must be gathering at the examination centers. From 11 to 1 is the frisking and the checking time, the biometric time. And 1:30 is the deadline, after which no candidates will be allowed to enter the examination center. And 2 p.m. is when the examination starts. Now, there's unprecedented security measures that are in place to ensure the safe movement of the question papers. In Bhopal, the sealed question paper packets have begun moving out of a highly secured strong room under the protection of armed CRPF personnel.
3: नीट परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा में जो पेपर्स हैं उन्हें अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए सामने सीआरपीएफ के जवान आपको दिख जाएंगे और कड़ी सुरक्षा घेरे में नीट के जो पेपर्स हैं उन्हें स्ट्रांग रूम से निकाल करके अब परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस कड़ी सुरक्षा के साथ फिलहाल ये पेपर्स जो हैं ये रखे गए थे। एयरफोर्स के विशेष विमान से पहले भोपाल पहुंचे और फिर भोपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपर्स को गुप्त जगह पर रखा गया था, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी जो है वो यहाँ दी नहीं गई थी पहले कि पेपर्स कहाँ रखे गए हैं। आमतौर पर जो कमिश्नर कार्यालय होता है वहीं पर ये पेपर्स रखे जाते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी रखी गई थी, गोपनीयता इतनी ज़्यादा रखी गई थी कि पेपर्स के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि इन पेपर्स को कहाँ रखा गया है। और अब आपको दिखाएं कि जैसे ही परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है तो परीक्षा केंद्रों की तरफ कड़ी सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की इन पेपर्स को रवाना किया जा रहा है।
0: And India Today is tracking all the exhaustive steps that are being taken by the Center for the NEET retest. Let's take a look at this report from the ground from the national capital.
4: Shortly from now, 2 million students will reappear for the NEET examination. And this time, the lessons learned from the past mistake. And here what we see at Denny's Connaught Place. This is the van, usually that transports heavy cash from the banks to the ATMs. Now, this machine, this time, is loaded with the NEET examinations paper from the bank where it was kept in a safe house. I imagine the bank usually that is guarded by normal security person, this time heavily guarded by the paramilitary, not only Delhi police officials, but the paramilitary officials, including the BSF that were deployed right outside these banks. No scope, no loop for any possible paper leak. And this time the van is now ready, loaded with the NEET papers along with the education department officials. A protocol vehicle, literally a security vehicle with the Delhi police that will be escorting these vans to the examination center. So now we see the vehicle that has loaded the NEET papers. Then you see the officials of the education department, two vehicles of the education department. Then there we see the Delhi police rear escort vehicle. And then there is a front escort vehicle along with the presence of BSF. This is the deployment that looks like, really, because it matters to 2 million, more than 2 million students whose future is on the stake. They'll be reappearing, all those trauma, all those stress yet again. And that's exactly why the lessons have been learned by the government. This time they're prepared. We have seen the Air Force plane carrying out, transporting the NEET papers. And now this is how the arrangements have been done to ferry out these examination papers from the banks that were kept literally in the safe house of these banks, heavily guarded with the armed personnel that we see inside the banks. It was their duty to guard these NEET papers. And now, as we see, the vehicle, totally metal shield protected vehicle loaded with the NEET papers, has left for the NEET examinations, which will be held shortly. At Delhi's Connaught Place, with Nasir, I'm Ashutosh Mishra for India Today.
0: So over a month after the NEET UG 2026 paper leak, more than 22 lakh aspirants are appearing for the re-examination today. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has sought to reassure students on the day of the examination. While speaking to reporters, Pradhan projected confidence on NTA and also backed the under-fire system. Pradhan also comforted NEET candidates and stated that the students must give the exam fearlessly. The NTA has put in place an extensive multi-layered security and logistics plan to conduct one of the country's biggest medical entrance examination. NEET retest is being held at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. Furthermore, each of the 95,000 examination rooms is equipped with CCTV coverage. In all, 1,38,500 160 CCTV cameras have been installed, with feeds being monitored virtually at the national, state and ministry levels. Candidate verification has been strengthened with 38,795 frisking staff and 48,448 personnel for biometric verification. Around 6,700 observers and 40 to 50 security personnel have also been deployed at each examination centre. As thousands of students appear for the retest, all eyes are now on whether these measures by the NTA and the central government can ensure a fair, transparent and controversy-free examination process.
5: इतने सारे हम लोग की इतनी चेकिंग होती है वहाँ पर जब हम सेंटर पहुँचते हैं, इतने सारे 5-6 जगह चेकिंग होती है, हम लोगों पर चेकिंग पे ध्यान इतना देते हैं कि तुम्हें ये नहीं पहनना है, ये नहीं पहनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। इतनी सारी वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है, पर हमसे ज़्यादा ध्यान देने पर अगर तुम अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करोगे पेपर के एरिए में, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम चाहते हैं कि पेपर प्रॉपर तरीके से हो, हम उसे फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम अपना बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छे से आए, हम उसे अच्छे से दें।
6: लीक हो गया था पेपर, तो उससे थोड़ा तो बुरा तो लगा, तो दोबारा, क्योंकि दोबारा वही नोट्स देखना, रिवीजन उनको करना बहुत मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए। ये तो क्या, वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, और तैयारी तो पूरी है। जिस हिसाब से इस बार पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने पहले भी बोला था कि थोड़ा टफ आएगा, लेकिन पिछली बार उतना मुझे लगा नहीं कि टफ था, लेकिन फिर भी वही टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
7: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है, मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: And some more news coming in. Free travel for NEET aspirants in Telangana. Telangana government buses to ferry students. Telangana Chief Minister Revant Reddy wishes the NEET aspirants ahead of the examination. Chief Minister Revant Reddy says, beat the stress and trust hard work, give your best. So that's the wish from Telangana Chief Minister Revant Reddy ahead of the NEET re-examination that is set to be held from 2 p.m. today. But the students will be reaching their examination center starting at 11 a.m. And the Telangana government buses will be ferrying these students, the NEET aspirants, for free in the state, across the state on today ahead of the retest of the NEET examination. Meanwhile, the Chief Minister has also wished the aspirants, saying that beat the stress and trust your hard work, give your best.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
3: Welcome back. Some breaking news coming in. This is regarding the Shiv Sena UBT split. Now, as per sources, we are learning that rebel MPs to formalize the split today. As per sources, 6 rebel UBT MPs to brief the media on their stand, and a formal split from the UBT Sena will be announced today by these 6 rebel MPs. They may release letter to the Lok Sabha Speaker, and they will also making photos of Speaker meet public. So they met the Speaker, the Lok Sabha Speaker, and those photos will be made public by the 6 rebel MPs of Sena UBT. So according to sources, a public announcement regarding the split within Shiv Sena UBT will be made today. All 6 rebel MPs will hold a joint press conference. Remember, this comes after the show cause notice that was issued by the Sena UBT Chief Whip yesterday. 24 hours was given to all these rebel MPs to explain why were they absent in a very crucial meeting that was called by the Sena UBT on Thursday, and after which now what we are learning today, we are learning that a formal announcement is likely to be made as per sources by these 6 rebel MPs. They will also be releasing photos and videos of their meeting with the Speaker, as well as the letter that they submitted to the Lok Sabha Speaker. So during the press conference, the rebel UBT MPs will explain the circumstances that led to their decision to break away. 2 MPs will arrive in Mumbai from Chennai and 2 from Kolkata. 1 MP is currently in Mumbai and another is in Pune. Following this, all 6 rebel MPs may also meet Deputy Chief Minister and Shiv Sena Chief Eknath Shinde. And if necessary, they will meet Lok Sabha Speaker Om Birla once again. But what is likely today is that they may make the formal announcement that they are splitting from the Sena UBT. And they are breaking away from the Sena UBT. And they will also be making public the letter that they submitted to Lok Sabha Speaker Om Birla, and also the pictures of their meeting. That will also be made public by these rebel MPs. So they're also likely to meet Eknath Shinde, is what we are learning, the Deputy Chief Minister, and they might also meet Lok Sabha Speaker Om Birla once again. So according to sources, a public announcement regarding the split within Shiv Sena UBT is likely today. My colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, kitne baje ye press conference hone wali hai rebel MPs ki, Sena UBT ke, aur ye announcement jisme wo karne wale hain is split ki?
4: Dekhiye, 6 sansad hain jo ye humko suchna mil rahi hai, uske aadhar par jo hai second half mein jo hai ye press conference kar sakte hain aur ye bata sakte hain ki kin paristhitiyon ke andar jo hai unhone party ko choda hai, aur uske saath saath वो ये भी बताएंगे कि अब वो जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट है उसमें विलय कर रहे हैं अपना, और 2 सांसद जो है वो चेन्नई से, 2 सांसद कोलकाता से, दीना भाई पाटिल मुंबई में है, और ओम राजे निंबाकर वो पुणे से दिल्ली आएंगे, और ये 6 के 6 सांसद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देर शाम जो है वो मुलाकात करेंगे जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के अध्यक्ष हैं एकनाथ शिंदे, उनसे मुलाकात करके अपना पार्टी के अंदर विलय करने की घोषणा के बाद वो मुलाकात करेंगे, और उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो स्पीकर ओम बिरला से अगर मुलाकात करनी पड़ी तो आने वाले एक या दो दिनों में जो है ये 6 के 6 बागी सांसद जो है वो मुलाकात करेंगे, और जो पिछली मुलाकात स्पीकर के साथ हुई थी उसके वीडियोस, उसके फोटोग्राफ्स और वो पत्र जो उन्होंने स्पीकर को सौंपा था, किन कंडीशन में उन्होंने जो है वो यूबीटी को छोड़ा है, उनका मानना है कि पार्टी जो एक्चुअल विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उससे भटक गई है। उसके साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ये चाहते थे कि यूबीटी का जो विलय है वो कांग्रेस में हो जाए, इन कारणों से उन्होंने पार्टी को छोड़ा
3: जी, तो और हिमांशु कल एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया था इन सारे 6 रिबेल एमपीज को ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो उस मीटिंग में जो थर्सडे को बुलाई गई थी उसमें क्यों नहीं आए थे। क्या उसका किसी ने भी रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक्शन लिया जाएगा।
4: देखिए, क्योंकि ये जो 6 सांसद है जो ये पहले ही स्पीकर से मुलाकात करके अपने फैक्शन को जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप के अंदर मर्जर के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो ऐसे में अब जो है उनके ऊपर ये जो विप उल्लंघन का मामला है वो बनता है नहीं बनता है ये स्पीकर के हाथ में है। स्पीकर अगर डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो विप है, 3-line whip है, वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का पार्ट है, यानी जब पार्लियामेंट चल रही हो तो इश्यू की जा सकती है, और पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए विप जारी करना वो 1 line है, 2 line में है या 3 line में है ये देखना है, और पार्लियामेंट्री पार्टी में सांसद का आना या ना आना अनिवार्य है नहीं है विप के अकॉर्डिंगली, ये तमाम इश्यूज जो है वो लीगली एक्सपेक्ट के तहत जो है स्पीकर इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि शिवसेना के जो 3 सांसद है उन्होंने भी मुलाकात की थी यूबीटी के, जिनमें अनिल देसाई है, संजय राउत है और अरविंद सावंत, इन्होंने भी स्पीकर से मुलाकात करके पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर उनका कोई गुट का सांसद उनसे मुलाकात करता है तो उनके पक्ष को वो जाने।
3: जी जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। हम आपके पास दोबारा आएंगे और अपडेट्स के लिए। सो द रिबेल एमपीज विल बी होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे इन विच अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द स्प्लिट इज लाइकली। लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट हाउ उद्धव ठाकरे इज लूजिंग दिस मैच 6-3. So in Uddhav Sena's parliamentary party meeting, the MPs who were present, the number stands at 3. It was a meeting that was called on Thursday. And these 3 MPs were Arvind Sawant, Anil Desai and Rajabhau Waje. Now let's also understand who all skipped this meeting. These are the 6 rebel MPs, which include Sanjay Jadhav, Bhausaheb Vakchore, Omraje Nimbalkar, Sanjay Deshmukh, Nagesh Patil, Ashtikar and Sanjay Deena Patil. And these are the 6 rebel MPs who had skipped this meeting. A show cause notice was also issued yesterday by Sena UPT Chief Whip, and it demanded answer, explanation why they did not attend this meeting within 24 hours or else they will be facing action. But so far, nobody has responded to that notice. And today, what we are learning as per sources is that these 6 rebel MPs will be making the formal announcement of the split. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates on the other side.
2: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
5: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

0: थोड़ा कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस लेवल पे जेई है उसी लेवल पे नीट भी होना चाहिए। ये नहीं कि जेई तो अपने लेवल पे ही है और नीट को आपने इतना हाइपर कर दिया है कि वो लगता है कि आईएएस वाला भी इसको क्लियर नहीं कर पाएगा इतना हाई लेवल।
1: तो पेरेंट्स आर हैप्पी अबाउट द अरेंजमेंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड ओनली इन द नेशनल कैपिटल। इट्स ओनली द दिल्ली गवर्नमेंट दैट हैज एक्चुअली थॉट अबाउट द पेरेंट्स बिकॉज इट्स हीट वेव, इट्स समर टाइम इन द नेशनल कैपिटल। इन फैक्ट इट्स क्वाइट हॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री as well, but none of the other cities we've seen any kind of arrangements or even water that is available for the parents who are waiting outside for their children outside the exam center. We also have Ravish Pal who is joining us from Bhopal. Ravish, how does the situation look like now that the gates have been closed? Are there any students who have been left behind or who have been denied entry into the exam center?
2: No, Anjali, the gates have been closed now, as you can see, the 1:30 p.m. Protocol time, when the clock reaches at the time at 1:30, the gates have been closed, and now the parents are waiting outside the center. You can see here, lots of parents who are here to drop their kids for the re-NEET exams, and now they are waiting outside the center. Because of the scorching heat, the administration has made some arrangements. They have put some tents and drinking water outside the examination center right now here in Bhopal. We are at Kendri Vidyalaya Center in Bhopal, and we have parents also who are waiting outside the center now. Kya kehna chahenge, ye jo pehle exam hoti hai, cancel ho jati hai, leak ho jata hai, aur abhi ek dobara hoti hai. To bachcho mein kis tarah ka koi stress tha, aap logo ne kis tarike se manage kiya phir 1.5 mahino tak bachcho ko?
3: राइट सी, ये ऑब्वियसली बच्चे ही होते हैं, स्ट्रेस तो आना लाजमी है, बट समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन अवर हैंड, एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बट ऑल दो फॉर नीट एग्जाम इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, मल्टीपल्स टाइम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वी कांट सपोर्ट कि ये बहुत अच्छा हुआ था, बट सेम टाइम पॉजिटिवली वी कैन लुक दैट इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम बिकॉज दे हैव गॉट 1.5 months एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रिपरेशन. So I don't think if somebody is genuinely, seriously working hard and preparing for the examination, so he always looks as
2: a
3: part.
2: Are you sure now that these papers will not be get any in controversy now again? This NEET will be neat and clean now?
3: We can just hope. See, because it's all about the, you know, media, it's all about the, you know, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी तंत्र है उसमें हम लोग बीइंग एज अ पेरेंट्स इतना ज्यादा
2: होपिंग फॉर द बेस्ट, यू होपिंग फॉर द बेस्ट, वी हैव सो मेनी अदर पेरेंट्स टू हु आर वेटिंग हियर आउटसाइड द सेंटर, एंड आप बताएं सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रिपरेशन को आज जो देखने को मिल रहा है और जो कुछ हुआ इन 1.5-2 महीनों में?
4: यहाँ पर तैयारियाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई हैं बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, बाकी लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में भी काफ़ी उल्लास देखने को मिला है कि एग्जाम देना है,
2: आप क्या कौन पेपर देना है,
4: साथ में उनके मन में डर भी रहा है, मेरे यहाँ से मेरा बेटा आया हुआ है जी, 3 तारीख का उसका पेपर मिस हो गया था, स्लिप डिस्क होने की वजह से वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तो वो तो काफी खुश है कि
2: इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम नाउ.
4: जी सर,
2: उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर तो ये.
4: जी सर उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी.
1: ऑलराइट, सो ऑन वन हैंड देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस रीटेस्ट हैपनिंग, बट देयर आर आल्सो सम फ्यू केसेस व्हिच आर इमर्जिंग एज यू जस्ट लिसन, एज यू जस्ट हर्ड दिस पेरेंट सेइंग दैट हिज सन मिस्ड द May 3rd एग्जामिनेशन, बट ही इज ग्लैड दैट द रीटेस्ट इज हैपनिंग एंड नाउ ही इज एबल टू गिव दिस रीटेस्ट. सो दिस इज ऑल्सो, दिस रीटेस्ट इज ऑल्सो अ बून फॉर मेनी वेयर एज अ बेन फॉर several others. We also have my colleague Atul Tiwari who's joining us from Ahmedabad and Santosh Sharma who's joining us from Lucknow. Atul, how is the situation currently there? Everybody has entered the examination center.
5: देखिए, मैं अहमदाबाद के आरजी तिब्रवाल परीक्षा केंद्र के बाहर फिलहाल मेरी मौजूदगी और मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें और गेट आपको दिखाऊंगा. जो परीक्षा सेंटर का गेट है वो बंद हो चुका है, पुलिस का पहरा आप यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं. 1:30 बजने के साथ ही जो छात्रों को प्रवेश देने का जो नियम था उसके अंतर्गत गेट को बंद कर दिया गया है. लेकिन थोड़े समय पहले यहाँ पे एक सामान्य विवाद हाथ में जो कलावा बांधा जाता है उसको लेकर भी हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी के कर्मचारी थे उन्होंने कुछ छात्रों के कलावे निकाले थे प्रवेश के दौरान, लेकिन कुछ जो मुस्लिम छात्राएं यहाँ पे पहुंची थी वो जब हिजाब पहने हुए उनका हिजाब भी यहाँ पे निकलवाया गया था, लेकिन जब बाद में नियमों को लेकर पूरी तरह से जांच पड़ताल यहाँ पे जो सिक्योरिटी कर्मचारी और पुलिस ने की तो उन्हें पता चला कि कलावा अलाउड है, हिजाब अलाउड.

0: आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है।

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: देखिए, जब बात अंडमान और निकोबार की हो रही है, इसको लेकर एक विवाद भी है, और विवाद ऐसा नॉर्मल सा नहीं। नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है। वो कह रहे हैं कि जो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, किरण रिजिजू जी, ये ग्रीड ओवर ग्रीन है कि करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे, इतना बढ़िया यहाँ का प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट है, वो बर्बाद हो जाएगा केवल पैसा बनाने के लिए।
2: सबसे पहले तो आपको समझना होगा, हमारा देश में कोई मन मर्जी किसी चीज़ को तबाह नहीं कर सकता है। हमारा एनवायरनमेंट लॉ बहुत स्ट्रांग है, और हमारा सरकार का नीति, प्राइम मिनिस्टर का क्लाइमेट के प्रति, एनवायरनमेंट, वातावरण, और पूरे जो हमारा इकोसिस्टम, जितना भी चाहे वो मैरिन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में हम बहुत सेफ हैं। दूसरा, जब हम इतना बड़ा सागर हमारे पास है, हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश का इकोनॉमी में, जब हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, हमारा ओशन का, हमारा इतना वास्ट दो सागर और एक हिंद महासागर हमारे पास है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का जीडीपी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उससे देश के लिए हमने क्या काम किया और देश के लिए क्या लाभ उठाया है। सवाल ये है, इन्वायरमेंट तो एक बहाना है। यहाँ जो नेटिव जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो निकोबार में शम्पेन ट्राइब हो, चाहे वो निकोबारिस हो, ग्रेट अंडमानिस हो, जारावास हो, यहाँ नॉर्थ सेंटिनेलिस हो, किसी को आज तक भारत सरकार का, जब से आज़ादी से लेकर आज तक, कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया है, यहाँ अधिकारी सब बैठे हैं, उनको मालूम है, यहाँ इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, यहाँ जो टेरिटरी है अंडमान, यहाँ जो नेसेसरी सेटलमेंट जिसको करना था, हमारा चाहे वेस्ट बंगाल से आए हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अलग अलग जगह से काफ़ी लोग हैं, वो भी पूरा नियम के तहत ही रहता है। वो जाके जंगल नहीं काटते हैं, यहाँ जाके बम नहीं मारते हैं सागर में जा करके, यहाँ जा करके इलीगल काम करके स्मगलिंग नहीं करते हैं। वो अपना मेहनत करता है, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हैं, यहाँ का नेटिव लोगों का रक्षा करता है। इसलिए ये जो प्रोपोगेंडा राहुल गांधी जी ने जो फैलाया है, वो भारत का भविष्य में जो स्ट्रेटेजिकली जो एक लिवरेज, एक ताकत मिलने वाला है, उसको कैसा रोका जाए, किसी भी तरीके से उसको रोकना है। देश का नीति, हमारा नेतृत्व का सोच और हमारा जनता, अब सब मालूम हो गया। अब आप सरकार में नहीं आ सकता है तो देश का जो ग्रोथ है, हमारा देश का संपत्ति को, हमारा भविष्य को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं?
1: सर, ये तो आप भारत के नेता विपक्ष पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
2: आरोप नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं।
1: कि भारत के नेता विपक्ष भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं।
2: नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम, मैं राहुल गांधी जी अकेला नहीं बोल रहा हूं, वो तो एक मोहरा है। इतना बड़ा एक इकोसिस्टम ताकत इस देश में आज काम कर रहा है। कहीं भी डैम बनेगा, पूरा पहुंच जाएगा एनवायरमेंट के नाम में, कहीं एक खनन होगा, कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, उसको रोकने के लिए एनवायरनमेंट के नाम में वहाँ पहुँच जाते हैं। एक हाईवे प्रोजेक्ट करेगा, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा उनका प्लाटून पहुँच जाता है, PIL फाइल करेगा, प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। ये जो जमावड़ा एक ग्रुप है, इन लोगों ने तो देश को पूरा तबाह करके रखा हुआ है, और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद से इतना लंबे समय तक तो उनका जो सरकार चला था, तो देश को तरक्की के रास्ते में तो लेके नहीं आया। आप जब मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जो तरक्की हम लोग कर रहे हैं और भरोसा जनता से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर जनता आपको वोट नहीं देते हैं या आप सत्ता में नहीं आया, तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, तो उसको देश को क्यों गाली करना है? देश का तरक्की को रोकने का कोई जरूरत नहीं है।
1: तो किस तरह से अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट का जो जीएनआई ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है उससे देश की तरक्की होगी, अंडमान निकोबार की तरक्की होगी जो उसके न बनने से रुकेगी। और आप उत्तर पूर्व से आते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो जो खतरा एक पड़ोसी से भारत को है वो आप भली भांति समझते हैं। किस तरह से विकास की उन योजनाओं को रोका जा रहा है आपके मुताबिक?
2: किसी देश को टारगेट करके हम चर्चा नहीं करना चाहते। स्ट्रेटेजिकली जो हमारा एडवांटेज क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं भारत सरकार, विशेष करके जो मेगा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट आते हैं, उसको अगर आप अपोज करना है तो आप बारीकी से समझाइए लोगों को। आप बिना तर्क और बिना एक्सप्लेन किए असली वजह ऐसे ही आप हवा में बोलेंगे कि एनवायरनमेंट बर्बाद करेंगे, ये प्रोजेक्ट से सबको नुकसान होगा, ऐसे हवा में बोल करके आप प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते हैं।
1: नहीं, जैसे 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर जो, अच्छा आज आपने डाइविंग की तो जो अंडरसी कोरल है वहां पर वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टर्टल की जो वहां पर नेस्टिंग होती है लेदरबैक टर्टल्स की नेस्टिंग वो प्रभावित होगी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
2: ये जो आरोप लगाया इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं कि बिना तर्क का आरोप नहीं लगाना चाहिए, खास करके जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, ठीक है, बहस होते हैं वो ठीक है, मगर राष्ट्रीय हित में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये मैरिन लाइफ या जो मैरिन इकोसिस्टम का जो बात करते हैं, ये तो अभी एलजी साहब ने बताया, मैंने आज जाके देखा कितना सुंदर दुनिया है अंदर में, उसको बचाने के लिए हमारा सरकार ही काम कर सकता है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन तरक्की करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ डाइविंग करके तो अपना जिंदगी तो हम पूरा नहीं कर सकते, कई और काम भी करना है, तो डाइविंग भी करना है हमको, वन संरक्षण भी करना है नहीं मैं तो सही बात बता रहा हूं, हर चीज करना पड़ेगा ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है, यहाँ का इंडिजिनियस जो नेटिव है उनका संरक्षण भी करना है, और यह इंडस्ट्री भी आना चाहिए, और यहाँ जो विश्व का सबसे खूबसूरत जो एक पर्यटन का जो सेंटर, टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए वो भी बनना चाहिए, वंचित तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ उल्टा हम लोगों ने लेट कर दिया है, पहले होना चाहिए था। और जो डीप ओशन में जो हम लोग एक्सप्लोरेशन, आपको मालूम है डीप ओशन मिशन मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, समुद्रयान हमारा तैयारी है, मैं उस समय जब अर्थ साइंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे थे तब भी मैंने जा कर के पूरा सेंटर देखा है, हमारे इंडियन ओशन में मैपिंग भी हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग डीप सी डीप ओशन में जा कर के मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, और 5000 मीटर से अंदर जा कर के हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये सारा बहुत तेजी से चल रहा है, पहले कभी भी डीप ओशन मिशन वगैरह कुछ नहीं था।
1: तो ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो भारत के विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं ये ताकतें, और भारत के अंदर ही लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं?
2: यहाँ हमारा देश में एक जो वामपंथी विचारधारा के ग्रुप तो पहले से ही है, कोई भी अच्छा काम इस देश में होना नहीं चाहिए। जब चीन और भारत का लड़ाई हो रहा था 1962 में, उस समय तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी में खेमे जो है चीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको मालूम है, फिर वो CPI और CPM में विभाजित हुआ। आज भी बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का तरक्की नहीं दे सकते हैं, वो हम आर्टिकल 370 हटाया उसको भी विरोध किया, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो विरोध करते हैं, तो इनको हम सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाकी अच्छा सोचने वाला, देश के लिए सोचने वाले जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सबका एक साथ आना होगा, ये तो समय आ गया, और अब इस तरह के लोगों को मार्जिनलाइज करना जरूरी है, और विशेष करके जो भारत के तरक्की को रोकने के लिए जो तथ्य हैं उनको डट के मुकाबला करना होगा।
1: अच्छा एक प्रश्न और, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट में सबको साथ लेकर चलना ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी भी है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के या नेशनल इंपॉर्टेंस के इतने बड़े मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष को आप कन्विंस करेंगे या उनको लेकर चलेंगे कि ये परियोजना क्यों आपकी दृष्टि में अच्छी है?
2: देखिए, नेता प्रतिपक्ष को मैं समझा नहीं सकता हूँ। उनका माइंड, उनका एक सोच और उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, एक एनजीओ ग्रुप्स है जो उनको आइडिया देते रहते हैं, ये करो वो करो। वैसे तो कलीग है तो हम तो बात करते ही हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व भी है, सारा ओपोजिशन लीडर के साथ भी मैं बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं, सीनियर लीडर का घर में मैं जाता भी हूँ। मेरे ये दुश्मन नहीं हमारे, लेकिन जब देश के विरोध काम करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वरना तो हमको, आप सरकार को आप क्रिटिसाइज करो, गाली दो, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में चलता है। लेकिन राष्ट्रहित में, राष्ट्र के महत्व प्रोजेक्ट को अगर विरोध करता है तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहस जो भी हम लोग एक दूसरे को करते हैं या विरोध करते हैं वो ठीक है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको एकजुट होना जरूरी है।
1: आपने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने आपको धन्यवाद भी कहा और कहा जुजुत्सु हो जाए, तो क्या दो दो हाथ हो जाए इस मुद्दे पर उनके साथ आपको?
2: नहीं,
1: क्या
2: ये लगता तो मजाक है। उन्होंने पिछली बार मुझे कहा था कि उनके घर में जिम है तो एक साथ जिम करेंगे। मैंने कहा कि, मैंने मजाक में कहा कि आपका साथ मैं जिम नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है। तो फिजिकल इशू नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मजाक में कहा। लेकिन चलो, हमारा नेता प्रतिपक्ष से मैंने बर्थडे ग्रीटिंग किया, उन्होंने मजाक किया। लेकिन जो सीरियस बात में मैं मानता हूँ कि अगर आज भी नेता प्रतिपक्ष सुधर के राष्ट्र निर्माण में अगर जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं तो अपील ही करूँगा आपके माध्यम से, मैं कह सकता हूँ कि आपको जितना जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स देश के बाहर जितने भी हैं, उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया, देश में भी कई लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं, उनको आगे करते हैं, आप ऐसा करो, सरकार का प्रोजेक्ट का खिलाफ काम करो। मैं समझता हूँ अभी मैच्योर हो गए हैं राहुल गांधी जी, इन सब से दूर रहने से ठीक है, और खुद भी सकारात्मक भूमिका निभाने से देश के लिए अच्छा होगा।
1: आप इस मंच पर मेरे साथ जुड़े किरण रिजिजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: यू वॉचिंग इंडिया टुडे टेलीविजन। India Today Television Studio is safe from dengue, protected by All Out.
3: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: आज जिन तीन जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक MSMEs ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 MSMEs में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा MRO को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है।

0: from an ancient Indian practice to the world's largest collective celebration. A massive wave of wellness swept across the globe on Sunday. India marked the 12th International Day of Yoga on an unprecedented scale, with Prime Minister Narendra Modi turning Kolkata's historic Red Road into a massive open-air yoga studio. From the heart of Kolkata to cities, towns and villages across the country, Yoga Day turned into a nationwide movement. PM Modi led the main event at Red Road, personally interacting with participants and monitoring yoga asanas during the mass session. Highlighting the theme, Yoga for Healthy Aging, the Prime Minister stressed that yoga is not merely an exercise, but a pathway to preserving human potential, vitality and resilience as people grow older.
1: उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं. एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल. आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू lifestyle disease at 70 than we were at 50.
0: The celebration saw top political leaders joining yoga sessions across the country. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister S. Jaishankar, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, along with yoga gurus Baba Ramdev and Acharya Balkrishna, participated in events at different locations.
2: शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो नित्य योग क्रिया करना ये बहुत ही आवश्यक है. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं, और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है.
3: सब योग करें और कराएं, इसी से ही 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा. नो क्राइम, नो करप्शन, योगाचार होने से सब भ्रष्टाचार खत्म. तो सब में अगाध श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा बढ़ती है.
0: Several celebrities also joined the nationwide observance. What began as PM Modi's proposal at the United Nations in 2014 has now evolved into a global movement. Backed by a record 177 nations, June 21st was declared International Day of Yoga, with celebrations now spanning more than 190 countries. As millions stretched, balanced and breathed together, India once again reinforced yoga's message to the world: health, harmony and human well-being beyond borders. Bureau Report, India Today.
4: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
5: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
4: India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
8: देखिए, जब बात अंडमान और निकोबार की हो रही है, इसको लेकर एक विवाद भी है, और विवाद ऐसा नॉर्मल सा नहीं. नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया है. वो कह रहे हैं कि जो पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, किरण रिजिजू जी, ये ग्रीड ओवर ग्रीन है कि करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे, इतना बढ़िया यहां का प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट है, वो बर्बाद हो जाएगा केवल पैसा बनाने के लिए.
9: सबसे पहले तो आपको समझना होगा, हमारा देश में कोई मन मर्जी किसी चीज को तबाह नहीं कर सकता है. हमारा एनवायरनमेंट लॉ बहुत स्ट्रांग है, और हमारा सरकार का नीति, प्राइम मिनिस्टर का क्लाइमेट के प्रति, एनवायरनमेंट, वातावरण, और पूरे जो हमारा इकोसिस्टम, जितना भी चाहे वो मैरिन लाइफ हो, वाइल्ड लाइफ हो, सारा चीज़ प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में हम बहुत सेफ हैं. दूसरा, जब हम इतना बड़ा सागर हमारे पास है, हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश का इकोनॉमी में, जब हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, हमारा ओशन का, हमारा इतना वास्ट दो सागर और एक हिंद महासागर हमारे पास है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का जीडीपी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उससे देश के लिए हमने क्या काम किया और देश के लिए क्या लाभ उठाया है. सवाल ये है, इन्वायरमेंट तो एक बहाना है. यहाँ जो नेटिव जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो निकोबार में शम्पेन ट्राइब हो, चाहे वो निकोबारिस हो, ग्रेट अंडमानिस हो, जारावास हो, यहाँ नॉर्थ सेंटिनेलिस हो, किसी को आज तक भारत सरकार का, जब से आज़ादी से लेकर आज तक, कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया है, यहाँ अधिकारी सब बैठे हैं, उनको मालूम है. यहाँ इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ. इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, यहाँ जो टेरिटरी है अंडमान, यहाँ जो नेसेसरी सेटलमेंट जिसको करना था, हमारा चाहे वेस्ट बंगाल से आए हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अलग अलग जगह से काफ़ी लोग हैं, वो भी पूरा नियम के तहत ही रहता है. वो जाके जंगल नहीं काटते हैं, यहाँ जाके बम नहीं मारते हैं सागर में जा करके, यहाँ जा करके इलीगल काम करके स्मगलिंग नहीं करते हैं. वो अपना मेहनत करता है, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हैं, यहाँ का नेटिव लोगों का रक्षा करता है. इसलिए ये जो प्रोपोगंडा राहुल गांधी जी ने जो फैलाया है, वो भारत का भविष्य में जो स्ट्रेटेजिकली जो एक लिवरेज, एक ताकत मिलने वाला है, उसको कैसा रोका जाए, किसी भी तरीके से उसको रोकना है. देश का नीति, हमारा नेतृत्व का सोच और हमारा जनता, अब सब मालूम हो गया. अब आप सरकार में नहीं आ सकता है तो देश का जो ग्रोथ है, हमारा देश का संपत्ति को, हमारा भविष्य को बर्बाद करना क्यों चाहते हैं
8: सर? ये तो आप भारत के नेता विपक्ष पर एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
9: आरोप नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं.
8: भारत के नेता विपक्ष भारत की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं.
9: नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम. मैं राहुल गांधी जी अकेला नहीं बोल रहा हूं, वो तो एक मोहरा है. इतना बड़ा एक इकोसिस्टम ताकत इस देश में आज काम कर रहा है. कहीं भी डैम बनेगा, पूरा पहुंच जाएगा एनवायरमेंट के नाम में. कहीं एक खनन होगा, कहीं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, उसको रोकने के लिए एनवायरनमेंट के नाम में वहाँ पहुँच जाते हैं. एक हाईवे प्रोजेक्ट करेगा, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा उनका प्लाटून पहुँच जाता है. पीआईएल फाइल करेगा, प्रोटेस्ट शुरू कर देगा. ये जो जमावड़ा एक ग्रुप है, इन लोगों ने तो देश को पूरा तबाह करके रखा हुआ है, और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद से इतना लंबे समय तक तो उनका जो सरकार चला था, तो देश को तरक्की के रास्ते में तो लेके नहीं आया। आप जब मोदी जी के नेतृत्व में देखिए जो तरक्की हम लोग कर रहे हैं और भरोसा जनता से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर जनता आपको वोट नहीं देते हैं या आप सत्ता में नहीं आया, तो जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, तो उसको देश को क्यों गाली करना है? देश का तरक्की को रोकने का कोई जरूरत नहीं है।
8: तो किस तरह से अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट का जो GNI ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, उससे देश की तरक्की होगी, अंडमान निकोबार की तरक्की होगी, जो उसके न बनने से रुकेगी? और आप उत्तर पूर्व से आते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो जो खतरा एक पड़ोसी से भारत को है वो आप भली भांति समझते हैं। किस तरह से विकास की उन योजनाओं को रोका जा रहा है आपके मुताबिक?
9: किसी देश को टारगेट करके हम चर्चा नहीं करना चाहते। स्ट्रेटेजिकली जो हमारा एडवांटेज क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं भारत सरकार, विशेष करके जो मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आते हैं, उसको अगर आप अपोज करना है तो आप बारीकी से समझाइए लोगों को। आप बिना तर्क और बिना एक्सप्लेन किए असली वजह ऐसे ही आप हवा में बोलेंगे कि एनवायरनमेंट बर्बाद करेंगे, ये प्रोजेक्ट से सबको नुकसान होगा, ऐसे हवा में बोल करके आप प्रोजेक्ट रोक नहीं सकते हैं।
8: नहीं, जैसे 1.5 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे वहां पर जो, अच्छा आज आपने डाइविंग की तो जो अंडरसी कोरल है वहां पर वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टर्टल की जो वहां पर नेस्टिंग होती है, लेदरबैक टर्टल्स की नेस्टिंग, वो प्रभावित होगी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
9: ये जो आरोप लगाया, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं कि बिना तर्क का आरोप नहीं लगाना चाहिए, खास करके जो जिम्मेदारी पद में बैठे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, ठीक है, बहस होते हैं, वो ठीक है, मगर राष्ट्रीय हित में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये मैरिन लाइफ या जो मैरिन इकोसिस्टम का जो बात करते हैं, ये तो अभी LG साहब ने बताया, मैंने आज जाके देखा कितना सुंदर दुनिया है अंदर में, उसको बचाने के लिए हमारा सरकार ही काम कर सकता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन तरक्की करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी तो करना पड़ेगा ना। हम सिर्फ डाइविंग करके तो अपना जिंदगी तो हम पूरा नहीं कर सकते, कई और काम भी करना है, तो डाइविंग भी करना है हमको, वन संरक्षण भी करना है नहीं, मैं तो सही बात बता रहा हूं, हर चीज करना पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी करना है, यहाँ का इंडिजिनियस जो नेटिव है उनका संरक्षण भी करना है, और यह इंडस्ट्री भी आना चाहिए, और यहाँ जो विश्व का सबसे खूबसूरत जो एक पर्यटन का जो सेंटर, टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए, वंचित तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ उल्टा हम लोगों ने लेट कर दिया है, पहले होना चाहिए था। और जो डीप ओशन में जो हम लोग एक्सप्लोरेशन, आपको मालूम है डीप ओशन मिशन मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया है, समुद्रयान हमारा तैयारी है, मैं उस समय जब अर्थ साइंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर रहे थे तब भी मैंने जा कर के पूरा सेंटर देखा है। हमारे इंडियन ओशन में मैपिंग भी हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग डीप सी डीप ओशन में जा कर के मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, और 5000 मीटर से अंदर जा कर के हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सारा बहुत तेजी से चल रहा है, पहले कभी भी डीप ओशन मिशन वगैरह कुछ नहीं था।
8: तो ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो भारत के विकास को रोकने की कोशिश कर रही हैं ये ताकतें, और भारत के अंदर ही लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं?
9: नहीं, यहाँ हमारा देश में एक जो वामपंथी विचारधारा के ग्रुप तो पहले से ही है, कोई भी अच्छा काम इस देश में होना नहीं चाहिए। जब चीन और भारत का लड़ाई हो रहा था 1962 में, उस समय तो पूरा कम्युनिस्ट पार्टी टूट गया, वो कम्युनिस्ट पार्टी में खेमे जो है चीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको मालूम है, फिर वो CPI और CPM में विभाजित हुआ। आज भी बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का तरक्की नहीं दे सकते हैं, वो हम आर्टिकल 370 हटाया उसको भी विरोध किया, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो विरोध करते हैं, तो इनको हम सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाकी अच्छा सोचने वाला, देश के लिए सोचने वाले जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सबका एक साथ आना होगा, ये तो समय आ गया। और अब इस तरह के लोगों को मार्जिनलाइज करना जरूरी है, और विशेष करके जो भारत के तरक्की को रोकने के लिए जो तथ्य हैं उनको डट के मुकाबला करना होगा।
8: अच्छा एक प्रश्न और, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, पार्लियामेंट में सबको साथ लेकर चलना ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी भी है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के या नेशनल इंपॉर्टेंस के इतने बड़े मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष को आप कन्विंस करेंगे या उनको लेकर चलेंगे कि ये परियोजना क्यों आपकी दृष्टि में अच्छी है?
9: देखिए नेता प्रतिपक्ष को मैं समझा नहीं सकता हूँ, उनका माइंड, उनका एक सोच और उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, एक एनजीओ ग्रुप्स है जो उनको आइडिया देते रहते हैं ये करो वो करो। वैसे तो कलीग है तो हम तो बात करते ही हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व भी है, सारा ओपोजिशन लीडर के साथ में भी मैं बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं, सीनियर लीडर का घर में मैं जाता भी हूँ, मेरे ये दुश्मन नहीं हमारे, लेकिन जब देश के विरोध काम करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वरना तो हमको आप सरकार को आप क्रिटिसाइज करो गाली दो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में चलता है, लेकिन राष्ट्रहित में राष्ट्र के महत्व प्रोजेक्ट को अगर विरोध करता है तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो कोई भी हो, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बहस जो भी हम लोग एक दूसरे को करते हैं या विरोध करते हैं वो ठीक है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको एकजुट होना जरूरी है।
8: आपने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं और उन्होंने आपको धन्यवाद भी कहा और कहा जुजुत्सु हो जाए, तो क्या दो दो हाथ हो जाए इस मुद्दे पर उनके साथ? आपको
9: नहीं,
8: क्या
9: ये लगता तो है? मजाक है, उन्होंने पिछली बार मुझे कहा था कि उनके घर में जिम है तो एक साथ जिम करेंगे, मैंने कहा कि मैंने मजाक में कहा कि आपका साथ मैं जिम नहीं करूँगा, मुझे डर लगता है, तो फिजिकल इशू नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे मजाक में कहा। लेकिन चलो, हमारा नेता प्रतिपक्ष से मैंने बर्थडे ग्रीटिंग किया, उन्होंने मजाक किया, लेकिन जो सीरियस बात में मैं मानता हूँ कि अगर आज भी नेता प्रतिपक्ष सुधर के राष्ट्र निर्माण में अगर जुड़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। मैं तो अपील ही करूँगा आपके माध्यम से, मैं कह सकता हूँ कि आपको जितना जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स देश के बाहर जितने भी हैं उन्होंने भी बहुत इस्तेमाल किया, देश में भी कई लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं, उनको आगे करते हैं, आप ऐसा करो सरकार का प्रोजेक्ट का खिलाफ काम करो। मैं समझता हूँ अभी मैच्योर हो गए हैं राहुल गांधी जी, इन सब से दूर रहने से ठीक है और खुद भी सकारात्मक भूमिका निभाने से देश के लिए अच्छा होगा।
8: आप इस मंच पर मेरे साथ जुड़े किरण रिजिजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद जी।
4: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे टेलीविजन। इंडिया टुडे टेलीविजन स्टूडियो इज सेफ फ्रॉम डेंगू, प्रोटेक्टेड बाय ऑल आउट।
10: 50 स्टेट्स, 1 नेशनल मॉल, 2 वीक्स ऑफ फ्रीडम। The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
11: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
12: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: और सक्रिय रह सकते हैं। एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफ स्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेयर एट 50।
1: The celebration saw top political leaders joining yoga sessions across the country. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister S. Jaishankar, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu, along with Yoga Gurus Baba Ramdev and Acharya Balkrishna, participated in events at different locations.
2: शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं, और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
3: सब योग करें और कराएं, इसी से ही 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। नो क्राइम, नो करप्शन, योगाचार होने से सब भ्रष्टाचार खत्म। तो सब में अगाध श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा बढ़ती है।
1: Several celebrities also joined the nationwide observance. What began as PM Modi's proposal at the United Nations in 2014 has now evolved into a global movement. Backed by a record 177 nations, June 21st was declared International Day of Yoga, with celebrations now spanning more than 190 countries. As millions stretched, balanced and breathed together, India once again reinforced yoga's message to the world: health, harmony and human well-being beyond borders. Bureau Report, India Today.
4: From the world of entertainment, actor Samantha Ruth Prabhu is expecting her first child with husband filmmaker Raj Nidimoru. Samantha's fans are going gaga ever since the buzz around her pregnancy began after she appeared at an event of her latest film. Let's in fact take a look at this special report.

0: मानसिक रूप से यदि हम अपने को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो नित्य योग क्रिया करना यह बहुत ही आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब यह योग की क्रियाएं की जाती हैं और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
1: सब योग करें और कराएं, इसी से ही 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। नो क्राइम, नो करप्शन, योगाचार होने से सब भ्रष्टाचार खत्म। तो सब में अगाध श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा बढ़ती है।
2: Several celebrities also joined the nationwide observance. What began as PM Modi's proposal at the United Nations in 2014 has now evolved into a global movement. Backed by a record 177 nations, June 21st was declared International Day of Yoga, with celebrations now spanning more than 190 countries. As millions stretched, balanced and breathed together, India once again reinforced yoga's message to the world: health, harmony and human well-being beyond borders. Bureau Report, India Today.
3: From the world of entertainment, actor Samantha Ruth Prabhu is expecting her first child with husband filmmaker Raj Nidimoru. Samantha's fans are going gaga ever since the buzz around her pregnancy began after she appeared at an event of her latest film. Let's in fact take a look at the special report.

0: योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है।
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।